मिसाले यारी, नफरतों को छोड़ परे अच्छा एक परिवार मिला। नफरतों को छोड़ परे अच्छा एक परिवार मिला, किस्मत ने फिर साथ दिया, भरोसेमंद एक यार मिला। जरूरत के वक्त आज तलक हर बार उसका साथ मिला। जरूरत के वक्त आज तलक हर बार उसका साथ मिला। गर जिंदगी से मायूस हो जाऊं, आंसू पोंछता एक हाथ मिला। कभी पैसे कम पड़ जाते तो भरपूर मौज कराते मेरी। कभी पैसे कम पड़ जाते तो भरपूर मौज कराते मेरी। कभी मुश्किल में पड़ जाऊं तो जी जान से मदद करते मेरी। भाई मानना पड़ेगा तुम लोगों को, सबके सब बड़े ही निराले हो। मुसीबत के वक्त हमेशा तुम्हें साथ देखा, सही मायने में बड़े दिल वाले हो। याद है वो ऑनलाइन लूडो की रातें, कैसे हम सब फोन पर खेला करते थे। याद है वो ऑनलाइन लूडो की रातें, कैसे हम सब फोन पर खेला करते थे। छोटी से छोटी बातों पर भी हम बच्चों जैसे लड़ा करते थे। आज तक कभी अकेला नहीं छोड़ा, इतना प्यार करते हैं ये मुझसे। अगर एग्जाम का कोई क्वेश्चन छूट जाए उसका जवाब फिर मांगते हैं मुझसे। न जाने क्यों ऊपर वाला सबकी तकदीर कुछ यूं लिखता है। न जाने क्यों ऊपर वाला सबकी तकदीर कुछ यूं लिखता है। लोगों को कुछ दिनों के लिए मिलाकर उन्हें एक दूसरे से दूर कर देता है।

ए जिंदगी कहाँ ले आई तू मुझे, इस भीड़ में हसीन पलों की तलाश में। पीछे मुड़कर देखा तो दूर खड़े अपने अतीत के वजूद को हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते देखा। ऐसा लगता मानो मेरा अपना अतीत, अपना वजूद मुझसे रूठ गया है, बोझ से दबकर अंधकार में कहीं छिप गया है। लगता है मानो कीमती दौर को मैं पीछे छोड़ आया, सिर पर है सारे बोझ को मैं ढो आया। ऐ जिंदगी बता कहाँ ले आई तू मुझे।

सपनों की सुंदर बगिया में तूने ही घुमाया, हाल बेहाल कर आज तूने ही ठुकराया। आसमां का सीना चीर कर ऊंची उड़ान भरना तूने ही सिखलाया। सैलाबों आंधियों का धैर्य से सामना करना तूने ही बतलाया। दर बदर भटक कर पैरों में अब छाले हो गए, उज्जवल भविष्य के सारे रास्ते ही बंद हो गए। ऐ जिंदगी बता कहाँ ले आई तू मुझे।

भाई बहन माता पिता का ताज सिर पर पहनाया, आज तूने ही मुझे उन्हीं के लिए तरसाया। घूम घाम कर शाम को माँ की आंचल में सुलाया, अरे ओ जिंदगी तूने आज उसी माँ के प्यार के लिए तरसाया। क्या कहूँ ऐ जिंदगी अब तू ही बता मुझे, कैसा रहा मेरा जीवन जरा एहसास तो करा मुझे। ऐ जिंदगी बता कहाँ ले आई तू।

इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांग जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: Liscott Agnell Radio.
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: हेलो एवरीवन, मैं हूँ आप सबका दोस्त और होस्ट अमल,
1: और मैं अवनी,
0: एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो इनर वॉइस।
1: वेलकम टू दिस स्पेशल रेडियो प्रोग्राम ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट, अ की मोमेंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल।

0: जो अगस्त 1942 था, भारत राष्ट्रवादी उत्साह की चपेट में था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें अंग्रेजों को तुरंत देश छोड़ के जाने के लिए कहा गया था। बंबई की हलचल भरे सड़कों से लेकर बिहार की ग्रामीण गांवों तक स्वराज या सेल्फ रूल की पुकार पूरे देश में गूंज उठी।
1: महात्मा गांधी के लीडरशिप में हजारों भारतीय ब्रिटिश राज के विरोध में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने लाठीचार्ज, सामूहिक गिरफ्तारियां और क्रूर कार्रवाई का सामना किया, लेकिन उनका हौसला कायम रहा। द रेवोल्यूशनरी स्लोगन डू और डाई बिकेम द रैलिंग क्राई फॉर अ नेशन डिटरमिन्ड टू गेन इट्स इंडिपेंडेंस।
0: अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ मार्शल लॉ को इम्पोज किया और उसकी बाद हुई हिंसा में कई फ्रीडम फाइटर्स मारे गए, यातनाएं दी गई और जेल में डाल दिए गए। फिर भी भारतीय लोगों ने डरने से इनकार कर दिया और अपनी सविनय अवज्ञा और अहिंसक प्रतिरोध जारी रखा।

0: हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन अंत में दबा दिया गया, लेकिन ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1947 में अंग्रेजों के पास हार मानने और भारत को आजादी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। द सैक्रिफाइसेस एंड स्ट्रगल्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट पेव द वे फॉर इंडिया टू बिकम अ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट नेशन।
1: ये भारत छोड़ो आंदोलन की याद में एक विशेष कार्यक्रम था जो भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था।

0: अगले सप्ताह हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
1: अपने देश से मोहब्बत करें, स्वस्थ रहें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
0: विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: Scott Agnell Radio.

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया, याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलिडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम ए सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know? Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice, a radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize Award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18 karat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
11: Do you know?
12: Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस

0: इट इज ए पैंडेमिक.
1: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
0: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं. इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस.
2: इसलिए तो मैं बोलती हूँ, हाथ अच्छे से साबुन से धोना है.
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला.
4: और मैं भी.
0: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम ए सो स्मार्ट.
1: बच्चों, जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से, और बार बार हाथ जरूर धोना.
3: ओके आंटी.
2: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ.
3: क्यों मम्मी?
2: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस. वंस कंटेमिनेटेड, हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ. फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक.
1: बच्चों, ज्यादातर आप घर पे ही रहो. घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
0: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट.
3: मैं तो मजाक कर रही थी.
5: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस. Call in advance and tell your healthcare facilities provider of any recent travel or contact with travelers.
6: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
7: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप.
8: डू यू नो?
9: हाय, दिस इज योर होस्ट शिखा. डू यू नो अबाउट नोबेल प्राइजेस? हियर आई एम. ऑन 27 नवंबर 1895 Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice, a Radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize Award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-karat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate, more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
8: Do you know? Do you know?

0: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
1: मम्मी आज हॉलीडे है।
2: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
0: हॉलीडे किस चीज के लिए?
2: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
3: ओ याद आया याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
4: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
3: क्यों क्यों?
4: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
3: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिंस फॉर इट?
4: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
0: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
2: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
1: और मैं भी।
4: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
3: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
2: ओके आंटी।
0: अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ।
2: क्यों मम्मी?
0: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
3: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
2: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
4: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
2: मैं तो मजाक कर रही थी।
5: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
6: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
7: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
8: Hi, this is your host Shikha. Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
9: In a Voice, a radio.
8: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-carat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
10: Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
1: ओ याद आया याद आया।
4: बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice, a radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-carat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
11: Do you know? Do you know? Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया, याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी, आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड, हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस। Call in advance and tell your healthcare facilities provider of any recent travel or contact with travelers.
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: डू यू नो?
10: डू यू नो?
11: हाय, दिस इज योर होस्ट शिखा। डू यू नो? डू यू नो अबाउट नोबेल प्राइजेस? हियर आई एम। ऑन 27th नवंबर 1895, अल्फ्रेड नोबेल साइंड हिज लास्ट विल एंड टेस्टमेंट, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49. Most of them during the World War First and Second. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
12: In a Voice Radio.
11: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive three things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-karat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
9: Do you know? Do you know? Do you know?

0: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
1: मम्मी आज हॉलीडे है।
2: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
0: हॉलीडे?

0: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
1: क्यों क्यों?
2: आजकल आपको पता ही है,
0: वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
1: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
0: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
3: इसलिए तो मैं बोलती हूँ, हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
4: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
5: और मैं भी।
0: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम ए सो स्मार्ट।
1: बच्चों, जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना, और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से, और बार बार हाथ जरूर धोना।
4: ओके आंटी।
3: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
4: क्यों मम्मी?
3: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड, हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
1: बच्चों, ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
4: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
0: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
4: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice, a radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive three things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18 karat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate, more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
11: Do you know? Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
1: ओ याद आया, याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलिडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
4: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
1: क्यों क्यों?
4: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
1: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
4: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
4: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम ए सो स्मार्ट।
1: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
5: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
5: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड, हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
1: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
4: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice Radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize Award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18 karat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
11: Do you know? Do you know? Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
1: ओ याद आया याद आया।
4: बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी, आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिंस फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice, a radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-carat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
11: Do you know?
12: Do you know?

0: करते हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know? Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice, a Radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize Award ceremonies? The Nobel laureates receive three things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-carat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
0: Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलिडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी, आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिंस फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया, याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी, आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, seek medical advice, call in advance and tell your healthcare facilities provider of any recent travel or contact with travelers.
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: डू यू नो? डू यू नो?
10: हाय, दिस इज योर होस्ट शिखा। डू यू नो? डू यू नो अबाउट नोबेल प्राइजेस? हियर आई एम। ऑन 27 नवंबर 1895, अल्फ्रेड नोबेल साइंड हिज लास्ट विल एंड टेस्टमेंट, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49. Most of them during the World War First and Second. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
11: In a Voice, a Radio.
10: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize Award ceremonies? The Nobel laureates receive

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
1: ओ याद आया याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
4: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
1: क्यों क्यों?
4: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
1: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
4: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
4: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम सो स्मार्ट।
1: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
5: अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
5: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
1: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
4: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस। Call in advance and tell your healthcare facilities provider of any recent travel or contact with travelers.
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
6: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
8: डू यू नो?
9: हाय, दिस इज योर होस्ट शिखा। डू यू नो अबाउट नोबेल प्राइजेस? हियर आई एम। ऑन 27th नवंबर 1895 Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice Radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize Award ceremonies? The Nobel laureates receive three things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-karat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
8: Do you know?

0: रहे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया, याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी, आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से, और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड, हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice Radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-carat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
0: Do you know?